0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: भाई क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
3: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
4: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
4: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
4: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
4: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
4: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
5: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
6: अच्छा?
5: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
6: बाप रे!
5: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

एक बार नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहते हैं और एक तोता उस अमर कथा को सुनता रहता है और बीच में हुंकारे भरता रहता है। भोले बाबा देखते हैं तो पार्वती माँ की आंख लगी हुई है, उन्हें गहरी नींद आई हुई है। भोलेनाथ सोचते हैं कि हुंकारे कौन भर रहा था। भगवान शिव ने एक तोते को उड़ते हुए तभी देखा, उन्हें समझते देर न लगी कि अमर कथा यही सुन रहा था। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और तोता बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए सूक्ष्मतम रूप बनाकर सत्यवती के गर्भ में चला जाता है। वही तोता सुखदेव मुनि कहलाए, जो आज भी अमर है। तो भक्तों सुनते हैं भोले

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

चला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड जोंडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, हमारे प्यारे सुनने वालों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 24 तारीख जुलाई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज़ किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आर जे राशिदी दंगन दख्तु खबैन फैन वुकैन मोई से रही है। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी का सुबह का प्रोग्राम में प्यार से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम खुद मोर खलमा। करीबन 14 मिनट बैठी थी चुका है 9:03। आज शुक्रवार का प्रोग्राम है, दिन में 12 बजे तक हम आप लोग के साथ देने वाले हैं। एक बंदर तो उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे भी खोले जाएंगे, जहां का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके हैं 3 to 3। एंड उजाला रेडियो का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर आपको हर एक जानकारी मिलेगा। दिन में 12 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। तो चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा से, आप लोग सुनेंगे आप सभी सुनने वालों के लिए।

और इस तरह से खूबसूरत सा लक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। Het is vrijdag 24 juli. En ook weekend natuurlijk.

आज का प्रोग्राम में चलिए मिले जुले संगीत से हम आप सभी सुनने वालों को खिदमत करने वाला हूँ और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आएंगे।

गुम है किसी के पे प्यार में और शुभा शाम आई सुना से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने लीना रामेश्वर एस्क देशहर में भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे खुद मोर्ख लीना और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं और बेल्खी शहर में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुन रहे खुद मोर्खा

छुकर छुकर मेरे मन को तूने किया किया इशारा। अंडे का जय बेलशिशर में सुनीता भी प्रोग्राम को सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम जबाल खुद मोर है।

कितना मोय कितना विशाल पुल तुम्हें भेजा है खतू में मेरा दिल व्याल कितना मोय बा। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से

वालियर, हम और तुम, कुमार शानू एंड कविता कृष्ण मूर्ति के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। इमरो खरोनेगन शहर में भी बैठकर प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोरख भाई इमरो। आओ चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

बल यार, अगर तुम साथ देने का वादा करो कितना मोर खबलदा खुद मोर खलमा Hey, हमें एगो ऐप अंदर आयल हैगा राकेश भाई पटाई से हैगा एंड व्हाट खाऊं फंदा खेतन वेल रिसेप्ट अंदर आयल हैगा मुक्सा अलेसी बनियाज वेल कितना दिन के बाद एगो रिसेप्ट आयल अंदर मुक्सा अलेसी यावल मैं खाली ना लिखी कि कैसे ओकर रेसिप कैसे बनाई है बैल मुख्य सिम बचाओ द्रो खफेस ए बड़ा चीज मन जाए बैल तो कह चाहिए जाने के बनावे के एंड आशमी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मरखा

वेल यार, ये जो मोहब्बत है, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेल एपोफिर तुरक पठाई से भाई रकेश बोले बीता वीरी और द्रोखफिस, ओके प्रीमा थैंक यू। मुक्स अली जी अगर आपको बनावे चाहिए, ओमन ओमन का मैं ब्लैक पेसी भी चाहिए डाले के ए ब्लैकर, और अमसर हम सही तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी प्रोग्राम को बैठ कर इसमें खुद मुर्ख है।

उज्जला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और आज शुक्रवार 24 तारीख जुली के प्रोग्राम फ्राइडे 24 जुली एचएस बाइना वीकेंड, आप सभी को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड तू खवेंस हमारी तरफ से, वीकेंड के जय हो। जो भी आप लोग वीकेंडों में करिए, जो भी आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए। कोई से प्यार है तो बोल दे यार कि हमें तुमसे प्यार है। जो भी आप करते होंगे, या तो चाय या तो कॉफी बैठ कर पीते हो, या तो ऑन बैठ करते होंगे, स्वादिष्ट ऑन बैठ कीजिए। एक चश्मा कलमाओ बेंतियों ने कोक और कोक सालमाओ। ये कोई यात्रा पर जा रहे, फकांसी जा रहे, फैन फकांसी तू खवेंस हमारी तरफ से यार। अगर आप फकांसी से आइले हो ये तो वेलकम या चाहे जहां पर प्रोग्राम को आप लोग हमें सुनते होंगे, खुद मुर्ख शुभ दिन आप हरिक। हम गली हली से चाय ना, हम गली हली से कॉफी बनावे वंत ऐसे टेमो ना मिले तो। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, देखा जाए सत्य अभी प्रोग्राम को बड़ी कृष्ण खुद मुर्ख और भाई पवन लेमर में। गुड मॉर्निंग।

0: वो वलियर तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। और सुन बीता वीरी के बाद भल तो बीता वीरी और मटर के दाल इस ओक लेकर गनगोन भात और मटर के दाल एंड बीता वीरी स्वादिष्ट भोजन कीजिए ना। उजाला रेडियो है और देखा जाए संद्रा भी प्रोग्राम को बैठकर सुनने प्यार के साथ, तो प्यार के साथ गाना पेश है
1: शर्माए तेरा
0: क्या गीत।

बिसाल ओ साथिया, कितना मोई कितना बिसाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने वेल मानो होफ दौर में भी प्रोग्राम को बैठ के सुने हैं। बोले भाई बोले तू चिल्ला है मोक्सा ले सी और बोले लंच में खाली ब्रोत लाई से वेल यार आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मोर्ख भाई आनंद ये गाना तुम्हारे नाम

तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और देखा जाए हम जिस तरह से आप लोग को बता चुके हैं कि आज का कौन चीज हम लोग बनाओ की का खाओ की रस्सा पंद्रह लेगा भाई रकेश पटेल से मोक्षाली सी बीता वीरी झुरम छिरी बचाओ चलिए मानो गाना मांग करी से अपने सुनुष के लिए गाना पेश है और हो रही शहर में सीना भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे खुद मूर्ख है।

सजा लिया है ख्वाबों में तुमको, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और देखा जाए लक्ष्मी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख, और बेलखी शहर में मिला भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख।

तहां तू गैर है मगर यूं ही मेरा दिल कभी कभी ख्याल आता है। फैसल फैसल छेदी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख है ना बैठकर सुने वंत है इस अनंत वैरक वैरक से यार

0: वल्यर, कितना मोई, कितना बिसाल राहों में, राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई।
1: खामोश होकर दिल के किसी कोने में जिंदा रहे।
0: और चलिए फैंस बोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ एमी जी। और गाना जो आप लोग सुनेंगे तो अरिजीत सिंह जी की आवाज में।
1: बस खामोश होकर दिल के किसी कोने में जिंदा रह जाती है तेरी बेकरारी में, मैंने हर रात को जलते देखा है, हर खामोशी को तेरा नाम लेते देखा है। तू पास ना होके भी मेरे दिल के इतना करीब है कि हर धड़कन तुझे पुकार कर ही धड़कती है। ये फासले सिर्फ रास्तों के हैं, मोहब्बत आज भी वही है, बस किस्मत बदल गई है। अगर कभी मेरी आवाज हवाओं में सुनाई दे, समझ लेना कोई दिल आज भी सिर्फ तेरा इंतजार।

तेरा बेकरारी बोले वक्त बदल जाए लेकिन दिल बोले ना बदली यार। और अब की बार गाना को मांग करने वाली है सुनीता, तो चलिए गाना तुम्हारे नाम। गाने वाले होंगे आतिफ असलम की आवाज में, गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

0: वेल वेल सनम, एक बार तू मिल जा। आयुष सनम से आतिफ असलम की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। वेल वेल यार, कितना मोई कितना विशाल। 5 मिनट बाकी रहा 11 बजे में। 5 मिनट फॉर अल्लाह एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन, जो भी आप करते होंगे प्यार से कर लेना। अगर आप लोग ऑनबैज करते होंगे तो स्वादी से ऑनबैज कीजिए।
1: चांद के पार चलो,
0: चलो ना यार, चलो ना दिलदार, चलो चांद के उस पार चलो।

0: वाओ वलियर चलो चलो दिलदार चलो और बोले चांद के उस पार चलो।
1: सुन रहे हैं दिलों को
0: और बॉय का भी प्रोग्राम को बड़ी कृष्ण बिनिंग में गुड मॉर्निंग।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक 11 बजने वाले हैं और रिक्लाम के बाद फिर हम आप लोग से मिलेंगे और ये गाना रिक्लाम के बाद हम आपको पूरा सुना देंगे यार, पूरा सुना देंगे। नाद ब्रेक, नाद रिक्लाम।

एंड ये पलवा पल जो दिल के पास रहती है, हर चीज में प्यार प्यार प्यार ही प्यार होता है यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और आशा है कि ये गीत जो आप लोग सुने आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके रोतरदाम में सुग्रीम भज

तो चलिए सुग्रीम भजन, ये गाना तुम्हारे नाम। आई बॉय चलंग है, मी कैंतवा है यार।

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने विजय बच्चा सिंह जी के आवाज में, आओ आशा है कि गाना आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। खास करके सुग्रीम जो रोहतांग में प्रोग्राम

चलियो मेरी जान, मारीना मारीना इवेंट लीफ मैट आई बॉय वी कैंट हैव एंड यू आर उजाला रेडियो

सुन जाने जा एन सजना और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने अतिस बहना वीकेंड तो वीकेंड तो में थोड़ा चाहिए उसको मोई से लेकिन तो चाहिए बीतावे के जो भी वीकेंड में करिए प्यार से दुलार से दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

चल यार वा दिया मेरा दामन एंड तू कहां जाएगे यार। अनाशमी भी प्रोग्राम को बर्ग सुने हैं एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल आंखों में हम तुम, आओ इस तरह से मरूम नदीम खान के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। आशमी पठाई से रसेप भाटा आलू एंड क्लेमेज मसाला एंड टोमाटी में वेल लेकर एक स्मैक लगा लमाओ। जय जोशी बनाइए, प्यार से दुलार से बनाइए।

माई लव, और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने मरहूम शहीद वागिद हुसैन जी के आवाज में। एंड यू आर उजाला रेडियो है, वी कैन है द बेस्ट रेडियो, उजाला रेडियो अमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं। आई बॉय चलन दे,

अरे अरे बलम बलम एक रात रही जाना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो है यार, वीकेंड तो है। आप सभी को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड टू खबर हमारे तरफ से। राजेश बनान सी अमसलम सही तो उसमें काम करे हैं। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम।

अब आन मिलो सजना, दिल टड़प टड़प के मारा, एन मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक जब बजे रात के बारा, एन यू आर उजाला रेडियो दी हतवान आई बॉय करी हवा।

यार कर युवा ना तोर हमार और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने एंड देखा जय ओम सुना में धीरज सीताराम भी प्रोग्राम को सुने हैं एक कहती काम कर है और एक कहती ही लावे है चलन दे

जुवाड़ उजाला रेडियो चलन दे और पन्ना अंदर रेन में निर्मला बोले बड़ा विशाल ओके मोई लगे है खुद मोरखे बैना बैना बैना

बदल यार, कोई ना जाने कोई ना जाने, कोई कोई कोई अपन काम पर बैठ के काम करे और सब फरकेत तिप कर दे। ताका बोले है, बोले सुभाष या उसको या और हम तो के थोड़ा बोल ली कि तू फौत तिप।

0: जाओ बीने रे हमारे प्यारे सुनने वालों, बैना बैना बैना तो आलो फिर तीन मिनट बाकी है बारह बजने में द्री मिनट फुर्तवाल नाद रखलाम नाद ब्रेक है प्रोग्राम में मृत्यु समाचार जरूर से सुन लेना विजय रामबरन के जरिए और धीरे धीरे हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे और यही आशा कि आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने बनाए सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारा साथ देने के लिए हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू वेल टू द फोक इन द केयर। आप लोग अपना वीकेंड जो है आज तो मोई से बनाइए, मोई से बिताइए, मोई से खाइए, मोई से पिए, मोई से रहिए, जो भी करिए प्यार से करिए, दुलार से करिए, वरना ना करिए। खिड़की खोली रही सारी रतिया,
1: सारी रतिया।
0: आई बोई तो लोग मोई से रहिए, अपना आपके जरूर से ख्याल कीजिए। खिदमत की आपको दोस्त सुबह शिव गोबी बाय बाय स्वाई स्वाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम नमस्ते एंड खुदा हाफिज।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार मनी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध की रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान मनी महेश का बड़ा भाई नौफा काबड़ को और सिखमोंद का दादा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था अम्स्टरडम से मनी महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान मनी महेश का बड़ा भाई नौफा का बड़कू और सिखमोंद का दादा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस दखांस्तांद हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार सुनिए अम्स्टरडम से। परिवार महेश मंगोन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्तख यार औत। श्रीमती हरमिन महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सरमाका के पैदाइशी जो था अम्स्टरडम से। परिवार मंगोन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्तख यार औत। श्रीमती हरमिन महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक उत्फार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेह 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिनस्दखास्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेह 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

0: सदा रहा।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। होफ दौरब से रिधि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में

80 यार ओत। रुदि महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सरमका के पैदाइशी जो था। होफदोर्प से रुदि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत। रुदि महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंसदाख हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फरजोरखिंग परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: जिनको सच में पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं?
1: करु कौन जतन जल्दी हो मिलन, करु कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन छननन छननन, छननन।

होई होई के कुड़िया शेर दिया दिलेर मेहंदी नेहा कक्कर एंड तानिश्क बागजी से आप इस गीत को सुने एंड अगला गीत लंबोर्गिनी।

0: लंबोर्गिनी। हाँ, मोई गाना लंबोर्गिनी के तबला तबला रीमिक्स आप सुने, मोई लगे है तो। तब एगो और पेश है लाल घगड़ा, गीत का बोल उजाला रेडियो पर।
1: मुंडे कुड़िया पंगड़ा।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: झुमका
1: उजाला रेडियो के साथ ये संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।

जाना रेडियो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय विद शो। लेकिन मनु एयर्स आ रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम में वही शख्स, वही मशहूर शख्स फॉर उमर एंड स्क्वाट्स और वही उमर वाग डिजाइन ओक अमेजिंग ऑफ ब्रासफेस्ट 29 en 30 augustus in Den Haag, GIA Event Center mee. Oemer, waar je te zijn. Koop je tickets op tijd? Wacht per Grilina. Via brazenfest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Oemer, waar je te zijn.

यह है उजाला रेडियो और अब बजने जा रहा है ये गीत आपके खातिर। उजाला रेडियो पर हम बजाते हैं तोर खातिर।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

के साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम के इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना, दो लड़कन का आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और एतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक एतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिनसडख आंस्टांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम ये होना चाहिए अल्मीरा, अल्मीरा से परिवार गयाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता श्रीमान शांति गयाधर का ससुर नीलेन और शिरेन के नाना संध्या और चांदनी के ननवा ससुर जेलेन निजेई और जिया के परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारमाका के पैदाइशी जो था अल्मीरा से परिवार गयाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता श्रीमान शांति गयाधर का ससुर नीलेन और शिरेन के नाना संध्या और चांदनी के ननवा ससुर जेलेन निजेई और जिया के परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देंसदखानस्तांद हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्टखार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए अम्स्टर्डम से परिवार दुखी महेश। बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतो के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टर्डम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद और दो पतो के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मिरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिंस दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मिरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। ज्वानेनबर्ग के रहने वाले योहान महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई श्रीमती सीला महेश का बड़कू लड़कन मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफायल के नाना चेलानो जनाया और जेफानो के आजा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। ज्वानेनबर्ग से श्रीमान योहान महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई श्रीमती सीला महेश का बड़कू लड़कन मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफायल के नाना चेलानो जनाया और जेफानो के आजा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी इससे विदाई को आप ले सकेंगे कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनसदाह हल्फद्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए अम्स्टर्डम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार ओत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अम्स्टर्डम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का बड़ा मामा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक ऐतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिनसदख आंस्तांद हल्फद्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

एक और मृत्यु समाचार सुनिए अम्स्टरडम से श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औंत श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह का पति अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था अम्स्टरडम से श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह

0: कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमती फ्रीदा महेश भैरव सिंह का पति अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के दिन में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस्टाखांस्टांद हाल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।
1: ये

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। नीवखेन से परिवार घेसे सेव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल की आयु में नीखन फेफ्तार और माँ विधवा सुभद्रा सेव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घेसई के बेटा श्रीमती इरेन सेवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयक रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना नीवखेन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसई की मृत्यु नीवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। नीवखेन से परिवार घिसई शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में नीखन फेफ्तार और मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसई के बेटा श्रीमती इरविन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयक रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना नीवखेन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसई की मृत्यु नीवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दिंसडाफन फन जीफन तोत अख्तूर उत्फर्ट सेंट्रम क्रिमाटोरियम दालवैक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उत्रेक्ट ओवरफेक्ट में और अर्थी के दाहक्रिया आने वाले बुध के सुबह 10:30 बजे वूंसडाखानस्तांद हाल्फ एलफ किए जाएंगे दालवैक क्रिमाटोरियम फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उत्रेक्ट ओवरफेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार घिसई परिवार शिव गोविंद और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

क्या किया रे सनम आनंद राज आनंद एंड श्वेता पंडित इन दोनों से आप सुने नाडक कमरिया सॉन्ग था डक कमरिया

खाली दिल नहीं जान भी है मंगदा। अलका जी एंड हंसराज हंस, फिल्म का नाम कच्चे धागे। उजाला रेडियो है, ऑन टेलीफोन नंबर 020-409-0807। और अगला गीत प्रोग्राम में जो आप सुनेंगे तो होंगे अब रूना लैला की आवाज में पेश है।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाँ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

वरुण काजल नचनिया लोंडवन किनार डीजे शहीद एंड एमसी रे स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl Super Early Birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: सुन वालों ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नगमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादादाग 29 एंड ज़ोंडग 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर देन हाग में आप सुनने को जा रहे हैं नगमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज में ओक अनवेजग और ब्राज़ा फेस्ट

अब प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनवालो फार्डीन जो भी रहेगा और ब्रासा फेस्ट जाटरडाग 29 एंड जोंडाग 30 अगस्तस इन जिया इवेंट सेंटर एंड मत भूलना koop je tickets, je super early bird tickets, nu vanaf slechts €8,50 via brasafest.nl. Doe je liker?

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाइए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।

उजाला रेडियो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय विद शो। लेकिन मन्यू एयर्स आ रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम में वही शख्स वही मशहूर शख्स फॉर उमर एंड स्क्वाट्स और वह है उमर वागी दुजैन ओक आवेज़ ऑफ ब्रासाफेस्ट 29 en 30 augustus in Den Haag, GIA Event Center mee. Oemer, waar je te zijn. Koop je tickets op tijd? Wacht per Grielena. Via brazenfest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Oemer, waar je te zijn.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।